कलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज
2: रेडियो कार्यक्रम जीवन को वचन हो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: लसहे मेहबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम टमाटर की टनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरीमी दिम फिटिंग सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असिम दिम सम्मन बोरबरी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: 4470
1: 98511 87882 गल्छी बजार को लगी 010-4031-16 र 920 बजार को लगी 9851-2049-90 ओम 24 इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी धादिंग ओम 24 इंटरप्राइजेस तपाईको सेवामा सधैं तत्पर
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज